आज संघरे पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा तुम्ह छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद मुझे अबरे है बर काल का त्रास नवरे है ऊ जोसदा हमारे पच्छा श्री अस तो जजो कर हो रच्छा राख लेह मुराखण हाड़े साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो प्री चातुर दास गंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिस्तन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

कहूं सिमट भय शंकर काठा, श्री श्रेष्ठ दिखाई अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप सजंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दोट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जी अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट तो तिनके दुष्ट दुखत हव मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट समटारे, जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह है, रचा हुई ताहि सब काला, दुष अरिष्ट टर तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाह हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुट छाछ सकै न कोई,

लोक तेरा हा कड़क केत मैं शरण तिहारी आप हादै लेहो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छय करता श्री अस तुझ जपै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़िल सुने गोंग जो जाहि सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संवत 17 सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कह जाय

जान अपना मुझन बाजो, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन दवार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिं मैं किंकर थारा। दास जान दहा तू बारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता विदनाना। कृष्ण जत्था मत चरित्र चारो, चूक होए कबल्यो सुधारो, कबियो बाच दोहरा। जो निज प्रमो सो कहो जग माहे, जो तेह प्रभ को त्याए है अंत सुर को जाहिं दोहरा। हर हर जन दोई एक है, बे विचार कठ नाहे। जल ते उपज रंग ज्यों जल ही बिखा समाज दोहरा। जब आए सो प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कैत सुनाए का बाच दोहरा। ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चला तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए है संत, अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो, कोटक बिसन महेसो, कोटिंदर ब्रह्मा किते, राक्षस करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत ने तो। सुर्ग बास रगबर कराव, सगरी पुरी समेत चाउ पाई। जो एह कथा सुनै अरगा वै, दुख पाप ते निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्या छिप सकै न कोई। सम्मत 1755 हाड़वदी प्रथम सुख दावन, तप प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा। भूल परी लहल्यो सुधारा दोहरा।

तक परम परम परमेश्वर पुरुष पालन सदा सर्वदा सदाता दयालु मुछेदी भेदी नाम काम समस्त उपराधि समस्त स्थान तेरा जोर चातरी छंद जले हैं थले हैं पीत है पे हैं प्रभु हैं जुगा दिस है पे सैंग भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंद स्वरूपे नम शर्मा निस्मस्ति निधाने नमस्तवंग नाथ नमस्तवंग परमाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो वाह वाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो सौ सौके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समसंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद उता प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रमंगला करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल शांतवा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्वमान त्रमान दे भेव आदुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप साल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख आधार मूर्ता जौन आदि शेख देश से और नपेह जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो पहले और राग नाम काम विहीन पेख साम न जाय सर्वमान सर्वत्र मानस दय मानता है एक मूर्त नेक दर्शन कीन रूपा नेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक दे भेम न जान ही जिह कुतेब रूप रंग न जात पशु जान ही कह जेब तात्मात न जात जाकर जन्म रण बहीन चक्कर बकर फिराई चतर चक मान ही पुरतीन लोग चौदह के विखा जग जाप जह जाप

अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभ है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद है, अपंग अपंग है, अनंग है, भेख है, लीख है, पर मैं कर मैं नाद जुगा दिया जय है, वह है, भूतें धूतें नासें दासें धंद है, वाद्यां भगतें विरक्त है, अनासें प्रकाशें चिंतें सुनतें, अलिखें देखें लिखें, भेखें अटा है, गा है, सम है, गम है, नील है, नाद है, नित है, सुनित है, जात है, जात है, चरपड़ छंद, तप्रस

सोई दुखनाथ सब आपत कोई अड़ेल। सुनै गोग जो जाहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चितला चतरता आवई। दुख दर्द भाव निकट नंग तिन नर के रहै हो, जो जाकि एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस पण तीन कही जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

उपवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों उपवित संगत सबाइया कहन दे पुत सुन दे पुत से पुत जिनी मन मसाया कह नानक से पुत जिन गुरमुख हर हर ध्याया करमी सहजन उप जाय मन साजा सहसा न जाय न जाय सहसा कृष्णराह करम कमाए सहसा जीव मलीन है कृष्णम धोता जाय मन धोवो शब्द लागो हर स्यों राह चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज बुझाय सहसा बुझाए

प्रपाया उत्तरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहे पर पूरे

विस्मा धरती विस्मा खाणी विस्मा साध लगे प्राणी विस्मा संजोग विस्माद विजो विस्मा भोग।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पाया, बिन सतगुरु के ना पाया, सतगुरु विचार प्रखंड कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन्हें विच मोह चुकाया, उत्तम यह विचार है जिन्हें सच्चे से चित लाया।

थोड़ी सेव की थी सिंधु खीज नि सचो सच ते हाया निमंदे पैन रखियो कर सो कृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधन आन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित।

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूत खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भेओ नानक ताका दास।

वास्वामी हम जनता तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों पावै तिवै बुलैनी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे।

0: गुर का जप मंत्र निर्मल रहाउ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाहियां। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया शब्दों तां गाव हो हरी केरा। मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा, कार्ज सब सुवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा, करता तेरा सब किछ है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वड्याइया। कह नानक सुनहो संत हो शबद धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शबद तित कर सुभागै, कर सुभागै शबद वाजे कला जित करत हरी। पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटक मारिया तुरकर्म पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित करा नहद वाजे आनंद। सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जान। सुनते पुनीत कहते पवैता, सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवैता, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। तू ठाकुर तुम पहे
1: सूर पियो पिंड।

शेरशाह पातशाह निह चल चोर छत होड़ी वड़ी होड़ा पर तेरा मर्तबा रंग बरंग निकल जाओ तरतबा जी अंदर जियो सब जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर भला तेरे घर में दुदाई तू दुखार मार महता तेरे जंपड़ा

0: जय मात पिता सतमीत ना भाई
1: मनुहा नाम तेरा संग सहाई
0: जय महा भयान दूध जम दला
1: केवल नाम संग तेरा चले
0: जय मुश्कर होवे अत भारी
1: हर को नाम किन माए उधारी
0: अन पुने चन करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख घनेरे
0: सहस सहस को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोड़ी बंधना भरे
1: हर का नाम जपत निसरे
0: अन कमाया रंग तिख ना बजावे
1: हर का नाम जपत आगावे
0: जय मार ए जात अकेला
1: हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम अंधा ते आईया
1: नानक गुरमुख परम गत पाईए
0: दूर नहीं को लखवाही।

0: रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूल ते कवन दृष्टानी
0: जैन तू सार सवार संगारिया
1: गर्भ गण में जिने उबारिया
0: वार सत्ता तुझे प्यारे दूध
1: और जोवन भोजन सुख सूद
0: मृद प्याऊ ऊपर सख सैन
1: मुख प्याऊ बैठ को देन
0: देव निर्गुण गुण कसू न बूझे
1: बख्श ले तो नानक
0: जे बरसात तारो पर सुख बसा
1: सूत प्रात मीत बनता संघस
0: जे बरसात पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक कमला
0: जे बरसात भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: दीने हाथ पाव कान नेत्र रसना।

0: त्याग कौटी संग रचे
1: और छूट संग मचे
0: जो सजना सो हस्ताकर माने
1: जो हो वंशो दूर पराने
0: छोड़ जाए तो इसका शर्म करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन ले बतारे तो
1: गर्द प्रीत पसंद संग होए
0: अंध को मैं बदत्व कराल करतूत पशु की मान सजात
1: पचारा करे दिन रात
0: वाहर पे अंतर मल माया
1: छपस नहाए कच करे छपाया
0: वाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे लोभ स्वान
0: अंतर अगन वार्तन स्वा
1: गल पाथर कैसे।

0: एक पीना दे दस भी और रे
1: तो मुड़ा को कहां करे
0: जिस ठाकर से ना ही चारा
1: लाखों की जैसा नमस्कार
0: यहाँ का मन लागा बड़ा मीठा
1: सरब सूखता हूँ मन भूखा
0: जय जन अपना हुक्म मनाया
1: सरब भोग नानक तिन पाया
0: गांसा हो अपनी दे रास
1: तो आपी बरते अनद उलास
0: अपनी मान को बोर सवाल
1: अज्ञानी।

0: से हो रंग लावे
1: बिन से ओ मन पछतावे
0: जोधी से जो चालन हार
1: पटरे हो ता अंध अंधार
0: पटाऊ से ओ जो लावे ने
1: ताको हाथ ना आवे के
0: मन हर के नाम की बरी सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन तनक नाम सवाया
1: मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राज जोवन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रात हास्ती असव वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रो मो मान
1: मिथ्या आपस ऊपर करत मान
0: अतर पास साध की सरन
1: नानक जब जब जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सरमन पान निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दरब पोहिरे
0: मिथ्या नेत्र पेत पात हर पांद
1: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चन पर बकार कौतावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन नहीं पर पकारा
1: मिथ्या बास ले द्विकारा
0: बिन बूझे मिथ्या सब

0: ये प्रसाद शक्ति अमृत का है,
1: इस ठाकुर को रख मनवाए।
0: ये प्रसाद सगंध तन लावे,
1: इसको सिमरत परम गत पावे।
0: ये प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: इसे त्याए सदा मन अंदर।
0: ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
0: ये प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याए त्या मन जोग।
0: ये प्रसाद पाठ पटम बठन डावे,
1: इसे त्याग कत अवर लुगावे।
0: ये प्रसाद सबसे सीजे,
1: मन आठ पहर ताका जस गावीजे।
0: ये प्रसाद तो सबको माने,
1: मुक्ता को जस रसन बखाने।
0: ये प्रसाद तेरो रहता धर्म,
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।
0: राम जी जस दर गए मन पावा,
1: नानक पद से ती कर जावे।
0: ये प्रसाद अरोग कंचन देही,
1: लिव लावो तिस राम स्नेही।
0: ये प्रसाद तेरा उल्ला रहतो,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: ये प्रसाद तेरे सेगल सिंदर टाके,
1: मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके।
0: ये प्रसाद तुझको न पहुंचे,
1: सा सिमरो प्रभु छे।
0: ये प्रसाद पाई दिला बदे,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: ये प्रसाद अब को भरी जे,
1: मंति सिमरत क्यों आलस की जे।
0: ये प्रसाद असो हसो सवारी,
1: मंति प्रभ को कबु न बिसारी।
0: ये प्रसाद बाल मिल्क तना,
1: राग प्रोई प्रभ अपने मना।
0: जन तेरी मन बंत बनाई,
1: उठत बैठ सति से त्याई।
0: तेहे ते आए जो एक अलख है,
1: यहाँ हुआ नानक तेरी रखे।
0: ये प्रसाद करे पुन बो दान,
1: आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: ये प्रसाद तू चार बिहारी,
1: तिस प्रभ को सा सितारी।
0: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
0: ये प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: ये प्रसाद तेरी पत रहे,
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: ये प्रसाद सुने का नाद,
1: जय प्रसाद देखे बिस्माद।
0: ये प्रसाद बोले मत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हास कर चले,
1: जय प्रसाद पूरन फले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सह समावे।
0: ऐसा प्रभाव त्याव अर कत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू पर संसार,
1: इस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य।

0: साधु के संग में कुजल होत साधु के संग मिटे मान साधु के संग बूझे बाब नेरा साधु के संग पाए नाम रतन
1: साधु के संग कुपर जतन
0: साधु की महिमा वर्ण कौन बरानी
1: साधु की शोभा ब्रह्माए समानी
0: साधु के संग गोचर मिले
1: साधु के संग सदा पर फुले
0: साधु के संग आवे बस पंचा
1: सत्संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग ना कतु तावा
1: सत्संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पहन
1: सत्संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दोस्तों सा मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग कैसे नहीं वैर
1: साध के संग ना बिगा बैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा

0: सदा सुख पावे,
1: साध संग वास्तर को चरल है,
0: साधु के संग अजर सह,
1: साध के संग बसे सन ऊचे,
0: साधु के संग महल पहुँचे,
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध के संग सब कुल धारा,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार,
1: साधु

0: सफल जनम
1: साधक संग नहीं कुछ कहालो
0: दर्शन पेट तो होत निहाल
1: साधक संग कलुखत हरे
0: साधक संग नरक पर हर
1: साधक संग इया मुआ से ला
0: सा संग बिसरत हर मेला
1: जो शास होई फल पावे।

0: साध संग न मंथ बिसर
1: संसार पर निस्तर
0: साध के संग लगे बाव डीठा
1: साधु के संग काट काट डीठा
0: सा सा भया ज्ञाकारी
1: सा संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख
1: जैसे सूर सर्प को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी का मन हुए प्रकाश
1: जैसे अंधार ऊपर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा
1: अपने सबसे नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए
1: नानक जिन प्रभु आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की दीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सौ रम्या
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन

0: सफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल आधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक के रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत
0: ब्रह्म ज्ञानी है बुंद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सहज नवा

0: का निर्मलमंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइया
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी का खोजे महेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथन आखरा
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी के मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पारा
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सच का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मौत जोग जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सलाहकार
1: ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी

0: जो जो जपे तिसकी गत होए
1: सत्संग पावे जन को
0: कर कृपा अंतर और तारे
1: पशु प्रेत मुगत पाथर को तारे
0: धर्म रूप का उख नाम
1: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
0: काम ज्योत कित न पाइये धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम
0: जिसके मन पार राम कानवास हो
1: नाम सत राम दास
0: आत्म राम तह नदरी आया
1: संतन पाए तिन पाया
0: सदा नेट नेट हर जान
1: दास दरगह परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सो जिन करे
0: सरल संग आत्म दास हो
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: रब की आगे आत्म हतावे
1: जीवन मुकत सो कहावे
0: तैसा हरग तैसा सोगा
1: सदा अनंत नहीं बियोग
0: तैसा स्वान तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत

0: तारा
1: कई कोड कपा विचार
0: कई कोड नाम तो नाम ते आवे
1: नानक करते का अंत ना पावे
0: कई कोड भयो मानी
1: कई कोड अंध ज्ञानी
0: कई कोड कृपण कठोर
1: कई कोड अभिक आत्म निकोर
0: कई कोड बदर कहिरे
1: कई कोड पर दुख ना करे
0: कई कोड माया शरम माहे
1: कई कोड पर देश प्रमाए
0: जिधर लावो तिधर लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोड सद जति जोगी
1: कई कोड राजे रस होगी
0: कई कोड पांख की सर्व पाए
1: कई कोड पात्र बिरख निपजाए
0: कई कोड पवन बनी बसंतरा
1: कई कोड देव भूमंडल
0: कई कोड सत्य सूर नखत्र
1: कई कोड देव दानव इंद्र सिर छत्र
0: सगल समग्री अपने सूतारे
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे
0: कई कोड राज ताम सात को
1: कई कोड वेद पुराण सिमरत अरसासत
0: कई कोड किए रतन सुमंद
1: कई कोड नाना प्रकार जंत
0: कई कोड किए जर जीव
1: कई कोड गिरी मेर सुवरन थीवे
0: कई कोड जाग के अनुसाच
1: कई कोड भूत प्रे सुकर मृगाच
0: सौते नेड़े सौते दूर
1: नानक आप पलिपत्रया परपूर
0: कई कोड पाताल के वासी
1: कई कोड नरक सुरग निवासी
0: कई कोड जन में जीवे मरे
1: कई कोड बोजोनी फिरे
0: कई कोड बैठ थी काए
1: कई कोड काले तक पाए
0: कई कोड किए तनवंत
1: कई कोड माया में चिंत
0: जय जय पाणा तै तै राखे।

0: विस्तार
1: कई बार पसे पसार
0: सदा सदा एक अहंकार
1: कई कोट की ने वो पात
0: प्राप्त हो ब्रह्मा समात
1: का न जाने कोई।

0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरतारे
0: अनंत बसिया करे अंकार
1: नरक सुरग फिर अवतार
0: अन जतन कर रात निंद्रा
1: हर दरगे को कैसे गवे
0: आस रोजो भला कहावे
1: इसे पलाई निकट नावे
0: सर्व की रेंज जहाँ कामन होए
1: को नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कुछ होए
1: तब इसको सुख नहीं कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को वैरी मीत
1: तब लगने चल नहीं चीत
0: जब लग मोह मग संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: अब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सह खटे लाख करता वे
1: तृप्त नावे माया पाछे पावे
0: तन बो बिख्या के करे
1: न तृप्ता वे खप खप मरे
0: बिना संतो नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ पागी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावन करने हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी जैसे करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभु सोए
0: जो किन्नो स्वापरे रंग
1: तत्व दूर सबू के संग

0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे ना कोए,
1: संत के दुखन हान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मोह पवे,
1: संतन के दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओए भी गत पाए,
0: संत का निंदक महाताई,
1: संत का निंदक

0: जैसा जात ऐसा जस्ताया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोत सोत सो सीजिया,
1: गुरु प्रसाद तत सब बुझिया,
0: जब देखो तब सब कुछ मूल,
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल,
0: न को जन्म न को मरे,
1: आपन चले आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनेक जुगत रचताप युथाप,
0: अब नाची नाही कछु खंड,
1: तारन तारे हो ब्रह्मांड,
0: अर्थ पेव पुरख प्रताप,
1: आप जपाए त नानक जाप,
0: जिन प्रभु जाता सो सो भावंत,
1: सगल संसार उतरे तिन मंत,
0: प्रभु के सेवक सगल धारण,
1: प्रभु के सेवक दुख विसारण,
0: आपे में लय कृपाल,
1: गुरु पास जपे निहाल,
0: उनकी सेवा सोई लागे।

0: मैं थम मनो
1: गुर का शब्द मने अस्तम मने
0: ज्यों बखान नाव चढ़त रे
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
0: ज्यों दकार दीप प्रकास हो
1: गुर दर्शन देख मन होए विकास
0: ज्यों महा ध्यान में मार्ग पावे
1: साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
0: तें संतन की बात सो तुरो
1: नानक की हलो चा पूर
0: मन मूरो काहे बिलाइए
1: पुरब लिखे का लिखिया पाइए
0: दो सुभाव देवन हार
1: अवर त्याग तू तिसे चितार
0: जो कुछ करे सोई सुख मानो
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन वास्ताई तेरे संग
1: लपट रे ओ रस लोभी पतंग
0: राम नाम जह हृदय माहे
1: नानक पद से ती कर जाए
0: जर भग का लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तज मान लियो मन मोलो
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाल खेव संत संग चालो
1: त्याग क्या जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए
1: खोजल हर दर

0: इधर आया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मृत्यु को जीवालन हारो
1: भूखे को देवत आधार
0: धन दान जा की जष्टि माहे
1: पुरब लिखे का लेना पाए
0: सब कते के ओ करने जो
1: बिंदु सर हुआ न होग
0: सब जन सदा सदा रहनी
1: साते उस निर्मल करनी।

0: इसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मगल साजा के
0: सर्व दोख सुनिए करता के
1: राज में राज योग में जोगी
0: तप में तपी सर ग्रस्त में भोगी
1: त्याग त्याग भक्त सुख पाया
0: नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया
1: जा की लीला की मतना है
0: सगल देव हारे अवगा है
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोय

0: का पर्दा टाके
1: अपने सेवक की सर पर राखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाए
0: अपने सेव की आपत रखे
1: ताकि कतमित कोई न लाखे
0: प्रभु के सेव को न पहुँचे
1: प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दिस

0: जिसके कर्तव्य थे जात
1: मारे न रखे अवर न कोए
0: सरब जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे प्राणी
0: जप नानक प्रभ अलग विडानी
1: बारंबार बार प्रभ जपिया
0: अमृत मन तंत्र पिया।

0: पाए
1: पावे कैसे लय में लाए
0: जेवा एक उस्तत अनेक
1: सतपुरुष पूर्ण वेक
0: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
2: अगम अगोचर

0: और उपाव समीत बिसारो करुण कारण सो प्रभ समरथ ए तन संचो हो वो भगवंत
1: का

0: जपावो
1: सुनत कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाम
1: सह सुवाय नानक गुन गाओ
0: गुण गावो तेरी उतरस मैल
1: बिन जाए मैं बिक फैल
0: ओहे अचिंत बसै सुख नाल
1: सास ग्रा सर नाम समाल
0: चाड़ स्यानप सगली मना
1: संग पावे सतनाम।

0: प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महासुख होए
0: पावे बिरला कोए
1: जिन चाख्या से जन तृप्ता ने
0: पूरन नहीं डोलाने
1: सुपर परे प्रेम रस रंग
0: उपजे चाऊ साध

0: कमल मतलई
1: जन को प्रभो यो दयाल
0: सेवकिनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकत जन पया
0: जना मरण दुख प्रम गया
1: इच पुनि सरदा सब पूरी
0: सद संग हजूरी।

0: सर्व घटा करत प्रतिपाल
1: आदि पुरुष कारण करता
0: भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपे सो होए पुनीत
0: भगत पाए लावे मन हित
1: हम निर्गुण यार नीच अजान
0: नानक तुमरी सर